0: क्या बात बोला चिड़िया, मेरा दिल तिथर पिथर हो गया।
1: अयो मिम्मल का नेने तो सरदा रास्कुन बाटा प्रैक्टिस चेस कुंटना नंते अंते अंते रणी